0: My mom started cooking with khanam ghee in the 70s. Dal makhani, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using khanam ghee for 3 generations. The aroma, that creamy melt in your mouth, satisfying taste. Ah, now my kids insist I use this superfood for their eggs and lamb chops.
1: Mom, is the dinner ready? As I can smell the khanam ghee.
0: Khanam Ghee, the legacy lives on.
2: Khanam Ghee, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian supermarkets.
0: India Wala Paneer, winner of the Great Taste Award 2026. Delicious, soft white and natural paneer. Ghar ka swad, India ka swad, aapke local Asian supermarket mein available.
3: With LV, I can get my car insurance from just £299. Just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount. Because insurance is simple when it's me and LV.
4: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less November 2025 to April 2026. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required.
0: इस फेस्टिव सीजन में मिठाई और फरसान के लिए याद रखिए एक ही नाम, शायोना, जिनकी घर जैसी यूके में बनी ताजी मिठाई और फरसान का जवाब नहीं. सब कुछ फ्रेश एंड ऑल एट अ स्पेशल प्राइस. मठिया एंड छोरा फली 3 for £4.50 और घुघरे का तो जवाब नहीं. अवेलेबल एट ऑल शायोना स्टोर्स. विजिट आवर न्यू हनी पॉट लेन स्टोर फॉर ऑल योर स्नैकिंग नीड्स इंक्लूडिंग फ्रेश हॉट फूड. ऑल्सो सिलेक्टेड लाइंस अवेलेबल एट मॉरिसन्स, टेस्कोस एंड सेंसबरीज थ्रू आउट द दिवाली सीजन और ऑर्डर ऑनलाइन फ्रॉम shayonauk.com.
5: रिमिटली से अपने प्रियजनों को पैसे भेजें और दूर रहकर भी उनकी दिवाली को खुशियों से रोशन करें. चाहे त्योहार की तैयारी में मदद करना हो, जश्न का मजा दोगुना करना हो या थोड़े ज्यादा पैसे भेजने हो, उनकी दिवाली का हिस्सा बने चाहे आप जहां कहीं भी हो. लाखों लोगों का भरोसेमंद रिमिटली ऐप पैसे भेजने का एक तेज, किफायती और सुरक्षित तरीका है ताकि आप उनके साथ खुशियां बांट सकें. रिमिटली ऐप डाउनलोड करें और अपने पहले मनी ट्रांसफर पर खास ऑफर पाएं. Remitly UK Limited को FCA द्वारा विनियमित और अधिकृत किया जाता है.
6: And now, the weather.
7: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
8: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T&Cs and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.

0: The gift of unmissable travel. Citybond Escorted Tours is offering an exclusive Diwali special. Save £100 per person on all 2027 group departures. Whether you're dreaming of exploring Japan, discovering China and Hong Kong, or experiencing South Africa, Australia and New Zealand, your unforgettable journey starts here. This festive offer must end November 10th. Call Citybond today on 020-8206-3620 or book online at citybondtours.co.uk. Citybond, travel made special.
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
2: जी पाजी।
1: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूंगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूंगा।
1: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
4: हेलो
3: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
4: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
3: सर जी, आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
1: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय,
0: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk।
5: दिस विल बी माय वेरी लास्ट सीजन ऑफ कॉफी विद करण, सो जॉइन मी एंड हैव दैट वन लास्ट कप ऑफ कॉफी विद मी।
6: जॉइन करण जौहर एंड हिज एस्टीम्ड गेस्ट्स फॉर द फाइनल सीजन ऑफ कॉफी विद करण, स्ट्रीमिंग नाउ एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब नाउ।
0: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय अल्ट्रा विटामिन डी, द सनशाइन विटामिन फ्रॉम विटाबायोटिक, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and vitabiotics.com. For number one verification, see vitabiotics.com.
7: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
8: It's 19 after 7. Right, we got a winner for our listener's choice. We'll do that shortly. But right now, I got a easy corn cheer for you. In a village where girls don't play cricket, Vera puts on a turban and beard and becomes Veer to fulfill her dreams and meets Rohan. Who plays Rohan in this film? What's the name of the actor who plays Rohan in the film? 2009 it was released, but who plays Rohan in this film? Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
9: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
10: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Geo Hotstar.
8: 020-881-380-40, my number. You can WhatsApp 07925-700-272. Who plays Rohan in this film? Don't need the film name. This is a super easy one today. You guys got this. Come on.

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour with Jamin Foods.
4: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.

0: Omar, you're so right. What a beautiful song. साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तजा है. ओरे पिया, राहत फतेह अली खान, आज नचले on Sunrise.
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, Stone Age से लेकर New Age तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
0: The hit of the hour with Jamin Foods.
4: नवरात्रि के अवसर पर Jamin Foods की ढेर सारी शुभकामनाएं. मिलाइए नवरात्रि के रंगों में Jamin का चटपटा मजा विद नमकीन, मैंगो बॉल, चिक्की और बहुत कुछ. Jamin Foods, the ethnic taste of India.
0: चांद मेरा दिल. That song again, the Neeti Mohan version. गले से तेनु आज लगावण दे सजन, मैनु इश्क निभावण दे. जहां भी आप सुन रहे हैं, आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. दे रियली मेक मी स्माइल, दे मेक मी थिंक, दे मेक मी पोंडर, दे मेक मी स्टॉप एंड कंसिडर व्हाट आई एम अबाउट टू से. समटाइम्स आई डोंट.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mia live in concert, powered by India Wala Paneer. Experience the legendary Bollywood icon Udit Narayan performing live alongside the dynamic Aditya Narayan. One epic night of legendary hits, electric energy and pure Bollywood magic. Sunday, December 20th, 2026 at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets are selling fast. Grab yours now at Ticketmaster, AXS or visit raga.events.
1: Discover the magic of India with Tickets to India. Whether you're planning your next adventure or a trip back home, we've got unbeatable deals waiting for you. Book online at ticketstoindia.co.uk or call 0208-518-9100. That's 0208-518-9100. Tickets to India, bringing India closer.
2: Dosto, aap sabhi ka swagat hai fir se ek baar Khelo aur Jeeto program ke dusre episode mein. खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गोल्ड बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
2: जी बिल्कुल
4: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
3: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
2: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
3: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
2: बिल्कुल आप ऑडियंस पोल ले सकती है।
5: गोल्ड बैंक।
3: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
2: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
6: विजिट द गोल्ड बैंक 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल 0203 500 1111 goldbank.co.uk.
7: Great meals don't happen by chance. They begin with quality ingredients. The aroma of freshly ground spices, the richness of pure ghee, the quality of vegetables, sunflower and olive oils, the goodness of carefully selected pulses, peas and beans, and the natural taste of premium dry fruits. At Lioncroft, we believe every family deserves ingredients they can rely on. That's why we bring together a range of quality products thoughtfully selected for today's kitchen. Lioncroft. Bringing quality to every kitchen.
8: Kavita on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.
9: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
0: And the time is 3:20. What did you choose this hour for your winning song?
10: Listener's Choice, brought to you by Star Plus.
11: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
0: Watch India's Top 1% every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
12: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

0: Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: जी टीवी एच डी पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ। स्नेहा की जबाब पे आ गए हैं उसके जज्बात।
2: हमारी कहानी में तो हर चीज की शुरुआत सिद्धू ने की है, हमेशा वही पहल करता है ना।
3: स्नेहा जी,
2: क्या बोले मुझसे?
4: हमारा भाई सिद्धू तो पहले ही तुम पे लट्टू है, देखो कैसे कीचा चलाता है।
1: पर क्या किस्मत को मंजूर है उनके प्यार की कहानी?
5: सिद्धू पूर्वी पांडे की जिद।
1: गंगा माई की बेटियाँ आज शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
6: With LV, I can get my car insurance from just £299, just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount, because insurance is simple when it's me and LV.
7: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less November 2025 to April 2026. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required.
8: When you decide to invest with Barclays' award-winning investment platform with no monthly fee, you've made a good move. It can make you do a victory dance in a lift, yeah, at work. Oh, sorry. Barclays Direct Investing now with no monthly fee. Good move. Barclays, backing your future. Other charges such as trading fees apply related to your account activity. Full details on barclays.co.uk/directinvestingfees.
9: Go into the chapel and we're gonna get married.
10: Madhus and Sunrise Radio present the Tilda Asiana Bridal Show 2027 at the iconic Savoy Hotel, The Strand, London, powered by Ambala Suites on Sunday, the 31st of January 2027. Calling all elite wedding suppliers to book your stand, bridal fashion designers, event planners, decor companies, photographers, hair and makeup artists, jewelers and DJ entertainment companies, bespoke bars and drinks, wedding stationers, florists, wedding gifting services and much, much more. All under one roof at the magical Savoy. To book your stand and see floor plans, visit asianabridalshow.co.uk or email arjun@madhus.co.uk. The Tilda Asiana Bridal Show, Sunday the 31st of January 2027 at the iconic Savoy Hotel, The Strand in London. Thanks to our sponsors Chivas, Cobra Beer, Coca-Cola, Sony TV and Ambala Suites.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद. ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं.
13: नवरात्रि के रंग में मिला है और चटपटा मजा विद जेमिन्स खाकरा, नमकीन, मैंगो पल्प, चिकी और बहुत कुछ. विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे.
12: जेमिन फूड्स, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया.
14: जस्ट ड्रॉप्ड द ब्रांड न्यू TUI स्माइल्स रिवॉर्ड्स क्लब. Join for free today to unlock exclusive members-only deals, personalized rewards, and chances to win amazing prizes. Get even more from your holiday. Join for free today. TUI. Big rewards, big smiles. At all and after protected. T's and C's apply. See website for details.
15: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
16: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan, streaming now exclusively on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
17: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. New chicken and paneer melts at Pepe's Flame Grilled. Melted cheese, toasted focaccia, go barbecue or tomato salsa. Your melt, your way. Only at Pepe's.
18: Time check with Bright Sun Travel. Bright

0: For the creamiest, dreamiest coconut milk, it's always Tropical Sun. Tropical Sun, the flavors of the world.
1: दोस्तों आप सभी का स्वागत है खेलो और जीतो के मेगा एपिसोड में। बम्पर प्राइज जीतने के लिए अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो क्या आप सवाल के लिए तैयार हैं?
2: जी पाजी।
1: ये रहा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
3: सर जी प्लीज, मैं फोन ऑफ फ्रेंड यूज करूँगा और अपने डैड को कॉल करना चाहूँगा।
1: कंप्यूटर जी, इनके डैड को फोन लगाया जाए।
4: हेलो
3: पापा जी, मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पे आ गया हूँ और सवाल ये है कि गोल्ड बेचने और खरीदने की सबसे सही जगह कौन सी है?
4: ओ हाय रब्बा, ओ उल्लू के पट्ठे, तेनू एना भी नहीं पता, सारी दुनिया नू पता है यार, गोल्ड बैंक।
3: सर जी आंसर गोल्ड बैंक लॉक किया जाए।
1: और ये बिल्कुल सही जवाब, गोल्ड बैंक इज द राइट आंसर। सबको पता है गोल्ड खरीदने और बेचने की सबसे सही जगह है गोल्ड बैंक। हाय
5: Visit the Gold Bank, 215 The Broadway, Southall, 0203-500-1111, goldbank.co.uk.
6: Hey, have you heard the news? Mohanji, yes, Mohanji, he's really coming to town. Come, join the festive fun and divine celebration of life. There's yummy food and bhajan jamming, bringing all communities together under one roof in Wembley Park at 27 Patidar Centre on Sunday, 25th October at 2 p.m. Don't miss out, guys. Not every day you get a chance to be with a living master. Get your tickets now at mohanji.org/UK.
7: In England, we're using water faster than nature can replace. If nothing changes, by 2055, we could face a daily water shortfall of more than 5 billion litres. And in Wales, wetter winters and drier summers are putting pressure on the water supply. Most of us think we use around 30 litres a day, but the reality is closer to 140 litres. We can all help to save water by making simple changes. Take shorter showers, fix leaking taps or toilets, using a washing up bowl instead of running tap, and switch to eco mode on your dishwasher or washing machine. Water is precious. To protect it, we all need to use less. Search Let's Save Water or visit letssavewater.com for easy ways to save water every day.
8: This time of year, mom's already planning the mithai. Your auntie's counting down the days. Good thing Western Union is fast and easy because this family does not wait. Send in money directly to their bank account, mobile wallet or for cash pickup. So Diwali is exactly as it should be. Western Union, share the light like you are there. Visit participating post offices, Euro Exchange or other retail locations. Sending online, enjoy a zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third party charges may apply.
9: ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
10: ਗੰਜਿਆ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ
11: ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਥਾਪੀ ਦਾ ਸਟਾਰਿੰਗ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਨੀ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
12: ਵੱਡਾ ਤੇ ਥਾਪੀ ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਰੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
13: India Wala Paneer, winner of the Great Taste Award 2026. Delicious, soft, white and natural paneer. Ghar ka swad, India ka swad, aapke local Asian supermarket mein available.
14: This will be my very last season of Coffee with Karan. So join me and have that one last cup of coffee with me.
13: Join Karan Johar and his esteemed guests for the final season of Coffee with Karan. Streaming now exclusively on Jio Hotstar. Download and subscribe now.
15: Drive on Sunrise with Pepe's Piri Piri. Order a Pepe's this month and you could win tech vouchers on the spot. Plus, you're automatically entered into a grand prize gaming bundle draw. Flame grill flavor with a side of winning. Pepe's. T's and C's apply.
16: Mandeep says, won't Kerala ice cream still be very bitter or too bitter no matter how much sugar you add to it? Well, Manveen says, I make Kerala ice cream regularly and it's very interesting, the bitterness of the Kerala and the sweetness of the sugar. Mmm.

ये खाली बिल्ली ऐसे लफड़ा करे है, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे है, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछली है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल झूठा है, तेवर है न

0: play next on Sunrise.
1: चल बेटा सेल्फी ले ले रे
2: Coming up, it is Selfie Lere Le Le Re from Bajrangi Bhaijaan, along with this one. Param Sundari from Mimi, coming away. Keep it locked.
3: Witness the beauty of Jordan, Oman, Dubai, Istanbul, Doha and Abu Dhabi with TravelHubWorld.com.
4: Humse sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
3: Come to TRS at ITAC Cash & Carry in the heart of Southall and stock up on a wide range of brands in grocery, chilled, bakery, confectionery, soft drinks, household and cleaning products and much more. Rush to TRS at ITAC Cash & Carry Southall, open 24 hours, 7 days a week. TRS at ITAC Cash & Carry Southall, UB2 4AX.
6: Beautifect, the sell-out portable luxury beauty box for flawless makeup, now brings you a luxury range of beauty accessories, including the new matte gold makeup brush collection, Beautifect blender for airbrush application, and a range of beauty products to suit everyone, including a 100% mulberry silk eye mask, crystal nail file for manicured perfection, and stylish beauty storage solutions. Save time, look good, feel great. Always look your best with Beautifect. Visit beautifect.com or Harrods.
3: Pepe's Piri Piri presents the Unstoppable Tour 2027. After a sold-out tour this year, the supremely talented Shreya Ghoshal is coming back once again for a very special concert to celebrate the O2's 20th birthday on the 4th of June 2027 at the O2 London. Tickets are selling fast via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley, produced by Grace Entertainment and Rallo Events, radio partner Sunrise Radio.
7: England mein hum pani ka istemal utni tezi se kar rahe hain jitni tezi se prakriti ise dobara bhar nahi sakti. Agar kuch nahi badla to 2055 tak hame har din 5 billion liter se bhi adhik pani ki kami ka samna karna pad sakta hai aur Wales mein adhik geeli sardiyan aur adhik sukhi garmiyan pani ki supply par dabav dal rahi hain. Hum isse adhiktar log sochte hain ki हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं शावर लेने में कम समय लगाएं लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर इको मोड चुनिए पानी अनमोल है इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं
8: नवरात्रि के ऑस्पिशियस फेस्टिविटीज में आपके आंगन पर से साक्षात नव दुर्गा माँ का आशीर्वाद ऐसी जेमिन फूड्स की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं
9: नवरात्रि के रंग में मिलाए और चटपटा मजा विद जेमिन खाकरा नमकीन मैंगो पल्प चिकी और बहुत कुछ विजिट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर टुडे
8: जेमिन फूड्स द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया
3: Transform your home with Ant Builders Merchant. Specialists in insulation systems, paints, decorative renders and underfloor heating. For expert advice and a free quote, visit us at Wembley or Hanworth. Call 0330 8080 451 or antbm.co.uk. Quality you can trust.
10: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
11: What is that?
10: A gerbil. They were on sale.
11: Why would we want that?
10: They were doing 3 for 2.
12: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses and more. Available online and at your local IKEA. IKEA. A wonderful every day.
13: ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
14: ਗੰਜਿਆ ਜਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂ
15: ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਥਾਪੀ ਦਾ ਸਟਾਰਿੰਗ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
16: ਵੱਡਾ ਤੇ ਥਾਪੀ ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਤਰੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ

0: Discover affordable Dubai with Southall Travel. Enjoy 3 nights from just £629 per person, flying direct with Emirates. Perfect for families, couples or shopping trips. Hurry, limited availability and travel by December 10th. Call 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk. Southall Travel. Pay less, enjoy more. Southall Travel. Atoll protected.
1: India Wala Paneer, winner of the Great Taste Award 2026. Delicious, soft white and natural paneer. Ghar ka swad, India ka swad, aapke local Asian supermarket mein available. If you're missing the taste of India, feast on all your Delhi favorites right here in Birmingham at Via Delhi.
2: You mean those authentic gold kappas and papri chaat?
1: Yes, and tandoori momos, moong dal halwa, Indo-Chinese and a wide range of lip-smacking favorites at Via Delhi. After Dubai, now in Birmingham.
2: So, let's go now. I can't wait.
1: And don't forget, you can celebrate your special occasions in their party hall or book their outside catering. Let us do the hard work for you. Birmingham's tastiest food hotspot Via Delhi, 190 Soho Road, Handsworth, Birmingham. आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज। 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
3: कुट कुट के बहुत जी लिया, हुन खुल के जीवन दा वेला है। ए साडे लई सिर्फ खेड नहीं, लड़ाईया।
4: नीरू बाजवा, सनी सिंह, जगदीप वड़िंग, अमरप्रीत सिंह स्टारर, थापी। 16 अक्टूबर तो तुहाडे नेरली सिनेमा घरां विच।
5: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
6: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
7: Coming up, a great invention, but first, Dhire Dhire from Devara Part 1. On the UK's biggest Asia mix, you're locked into Nads.